0: क्लास तुमक वा भी
1: निवा से चामजो ना फुमा रे चमुला ना सोंसान तिनेन ना प्रिस्ता अफाती मिनिस्टर से या चुनिस मुचाराकार से तुंगा नेम लापान तनान से या ना फारे अरि वे राचुम प्रिस्ता ना रो मगा ती चमाजो न्यू ना रे तिनेन निस चिसरारा इने ना जाने निवा से रफा म्यास फुल दिमाला चुरुवारी म्यू तो नंदाला ने ना इजियान म्या चुनिया तीते आइजा सान फंडाइचा ने नाइचा मसे रिचा रिचुरु रियो ने मामिल लफा दे मनार का नान ह्यान ना वान्ना सोच इस चुने स्टूचिफ तो ना फा मेजा चिन चुम्बु जो बस मैं फा सावता तीन ना या बार रियो जाने सोफियर सी रे सोफियर ताउर जे रियो मिस फा दे मंजाना कंच रे रे याफ को तीन सावता बाती ताकी ना जानते बाती रेवा ना मुंबा ना Aiza, le fanapina nay, efa tap, efa tu se confinement zao, fa nefa zay mbola tsy naharay andeha izy, de mba tokony tsy reva na kaiky zany momba nay hoe aiza hoe zay mamelo ma de manjana, ny anay a, ny hoanina androany, tia tavina androany, ny hoanina rapitso, tia tavina rapitso.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: सूतु सूतु साने ने रजा कल मंदे मंदी तो नाम मत आकाश के आराम पिस्ते तम सब तुम कुछ कला रहे म्याना का टीम म्याना का काम रहे ये टीम म्याना करे अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वा ये जन बाते जान मंदी तो नाम मत आकाश के आराम ये जन बाते रिस्क सांप वा ना जब फिक्री जन मु उतनी मान लेकिन फिर लेन देसाना को दे मनारा का ना वो सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मनारा का नहीं दे ये देमरारे ना तब फिर तो सोम तांग मिरी जाने सेम जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु तो फटारा कौन जान ये ले फिर ना काफी ना जाने मासूत सा वो ना चार चार ले तीन रोपिया तक के ना बुला चुना ये ना जाने
3: ले सूट सान ले वचने के ते मत आकाश क्या रा सुनना ला को ले सूट तुम आते थी ते सेना बतार पे सूट जिस चीज माफ तले चां सूट सान से ले सूट पे ना काफी ना टीम ना कर सारे तुम आते थी ते वाला सा सीज़ हम सोचो ची मोला ना सच की नहीं सेंच साझा मापा ये रेना जब यंजा मानता नहीं मापता ना जरा के से ते तांजो ना तुम तुम्हारा ने
4: पहना काफी ना सूट ले उल्ला ना दे तुम्हारा Avanya tiko nak kene cili arah tempir nane tiko. Arah kampan rinwe teh teh tamat kaskar. Teh sutun mitu san. Ye fakir reza nawasre teh mafnasha neto nareo apa teh nawe makafit ku anti lusmam cikti zai teh nawe semana salti san ye. Ye cuma benyan jalan pamana nane tika manukan cik.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: आज तुमको वा भी
1: ती हमने रसोमनी ईसा तापा का लूट ते मंदीकेल ते तापा का ते मंदीकेल तापा का ते मंदीकेल इन्हें वाले फिर तो लपन लकानों रे चमाई ता फाउला ने मिचा बचले चीर का पोका रे न सारे ना मिले उल ईसा ना लाव सो वो जो हम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरं बे फमिसा अच्छा होता कमिंग सो या का पोका वो ते सामे फाउला ने ताल फिर तो लपन लकानों सो वे अमाना ले पिले स्टार्स पति माना मिले वे चीरामान तो कोई अपीन पीछे ऐसन तार ने यम दुलना अम्मी अमाना ले उलना रहती है स्टार्स फाइ चीर का पोका बे फाउलन तो को मंदिर क्या मिचो माला काश मालूना से सावन मिसा हम सो बच्चा ना कि तोफ तो वाना ये चीरो अम्मी का त्याग ना तुम चुस्वे तेरा तेरे मंगो माना सो फाउल सेम फन मिलना तुम चीर तो पतु को तुम्हारे से ना ले माला काश मालूना से सावन मिसा रहती सांवेनी तंत्र रुया माना निलं चीरा मान सोए

0: क्लास तुम कुफा भी
1: दिवकिन मस चपकन तुम्पन असवा जान तो चांच वितन उलारेक ओच फितेन रामी कुरियां नच कमी तोव मारनी फोक फरिंग अति फोक चेक पम नच कराज नस कराज नारेक के ता फ्रेक चंग अतन फोक फोट जुगन सेक फोट मेना मेंच न लोक न सेक कची वो फाफा फो त्याक वनो त्याक विस त्याक मलोंग अति कलोन त्याव कुनियाफा वेलुन तंग अतन फंगम प्यांग नंदाल फियावान हस तोक न चिंबा आल सिस मन गन आम फो चारन मि फंग आम ओहच नम फिसिंग स्न बार फो जेट मे सुबिक माई फंतंबा अगजे मन बाद लावच मिंजन तोहच वेलुन तंग अतन फ्रेस क्यांग फिता तकाल फिता कन फंग त्यावंग न तो ओफंग फोजे मकोल चेंग मलागास मानं कास चंग चिम से वार चका जेट मालें क्या लोफंग मंदों चाचे मेरे हरे फो गास ता तो बे जाजा गास तेरा गास फो ओचुन मेन कर न आचुजान तम राजंबे नि आज नुवान कुला कंग तन ननरियन चार गास चार फरा नि कांत की तोंजा म्याक्च अंप फंता कोनांच फतन नि पुरो की गास कार अरो वक चवोच ति फोक फिफंगा ति फोक दोस कोम नंगा से चतन जाजक के ना मलाजमेंट ओच सा इंग ति मन्यु मंदों चाच मरे हरे फो जातो ति मेन चका राजक
2: नरीरेरेन सासन फोतन नि सासन ति मफंतटन लांजन ते लांजा लांजा नि फोक को इंपितना मतकन लेल को मंगिक फो मवेसटन फतेवा कोनांजी के tiako za tiako ano tiako zareo de tiako tsika satria rany anatra de fifankatiavana sy fanajanana fiavanana mampiavaka tsika ke tiako mahita gasy mizara tsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotra mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitrana gasy asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka gasy aza magnika andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gase toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totaofapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranaka e ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimbany hasagna tokony anaranaka e aza matahotra fa zagna ariny inao koa tsy hagnampy anao ny magnitry indrignany hafa e aza miagnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.